एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन यर भरन जात यर पात नहन जह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत कह अचल मूरत अन पाओ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिजय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वरनत सुमत गोरे अमरदास परसिय पोहम पातक बिना सहे गोरे अमरदास परसिय सिद्ध साधक आसा सहे गोरे अमरदास परसिय ध्यान लहिय पौ मुक्कहे गोरे अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकहे एक बिन दुगण जो तौ रहै जस मंत्र मानवै लहै जाल पाप पदार्थ इतड़े गोरे अमरदास डिठै मिलहै चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग एह हौ मैं शोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन

तहे ना छूटिय खिन खिन फूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविय

सहलाया सोए आसाय अंदर सब को साहत है कि ओ निराशा होए क्या करे यह बपोड़ी।

सच नाम बिना प्रभ दाता दातार नेह चल ए हो तना सास सास आराध निर्मल सोए जाना अंतर जामी आगमा रसना एक पाना राव रहे सर्वत नानक बाल जाई वाहो वाहो सच्चे पातशाहो तू सच्ची नाई राव रहे सर्वत नानक बाल जाई

की फतेह। श्लोक महला तीजा। आशा अंदर सबको कोए निराशा होए, नानक जो मार जीविया सहला आया सोए।

0: रंग परांगा नेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किछ जानला, सब किछ तेरे वस तेरा कर पला, तेरे कर आनंद वदाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुदया गै बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता।

0: वढ़े वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सबके तेरे वास तेरा कर पला तेरा घर आनंद वधाए तुत कर माण महता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर देसै जतकता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तर्थ महत दिवस रात दोई दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या बुरियां या।

तुद आगे बिन वता सलूक। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खिले सगल जगत।

पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर पला तेरा घर आनंद वधाए तुद घर माण महता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर।

तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहिरी मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंत उपाई। ताकारिजक आगे कर तरिया, मेरी माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मान पाओ करिया। उडे उडे आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कमण खलावै कमण चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब

हर त्यावह हर त्यावह तुध जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जाम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, रता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा यवर न कोए, तू कर कर वेखह जानह सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पई ले निवासा। पानी पावक तिनह किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी आले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया। मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बृथा जात रंग माया कै। रहाउ जप

सेवक सिख हमारे तारिय है, चौने चौने सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिय हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जा को पीव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवत उतपाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।
जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट न है। रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरियायत। देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

सो कहौ टल गोर सेविया अहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफ तख सम्मदी नूर अर सहु कुर सह।

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठ आसूही सबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत षाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेवी अहन सस।

प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजिए। हो किरपाल दयाल नानक पौ पंजिए। प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजिए।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद।

सा जी का राशन डिठो चाओ दाता करता आप तुस्ते वे करे पसाओ तू जाना सा।

0: अंड जी जेर उत्पूजा खानी से तजा सो मित जाने नानका आसरा मेरा जनता हां नानक जंतु पाए कै संभाले सबना हां जिन करतै करना किया चिंता पी करनी तहां सो करता चिंता करे जिनु पा जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दिबान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख निक्कियां चंगियां लख पुन्ना प्रमाण लख तप उपर तीर्थां सहज जोग विवाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग्या तन पढ़िए पढ़ पुराण जिन कर तै करना किया लिखिया आवण जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहब एक तो।

0: पट पट गड्डी लदी है, पट पट पर ये है साथ, पट पट बेड़ी पाई है, पट पट गड़िए खात, पड़िए है जेते बरस बरस, पड़िए है जेते मास, पड़िए है जेते आर जा, पड़िए है जेते सास। नानक लेखे एक गल और हो मैं चकना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पड़े आते ता कड़या, बो तीर्थ पवे आते तो लवे आ, बहु पेकिया देह दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया।

छड़ी हो एक मन अलग ते आइए पाते में हो पाइए देवे ही कार कमाइए जो हो वे पूरे लिखिया ता तू ना दी पाइए मत थोड़ी सेव दुआइए मत

0: जोत में जाता अकल कला पर पूरे हा। तू सच्चा साहिब सिफ्स वाले जिन की थी सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रिया महला दूजा।
1: जोग शब्दों ज्ञान शब्दों वेद शब्दों ब्राह्मण है खत्री शब्दों सूर शब्दों शूद्र शब्द प्राकृत है। सर्व शब्दों एक शब्दों के को जाने भयो नानक ताका दास है। सोई निरंजन।

चादरा मारिए जे काले कालना तेनो नाव पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दरगे गया हारिए पढ़िया क्यों गया विचार गे विचारिए मो चले सो गे मारिए मो चले सो गे मारिए।

अवर अनल अनाद किया। सास रेख नेस सूर देन सैल तरु फल फूल दिया। सुर नर सप्त समुंदर के तारो तिर पवन जास। सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास। सुर नर सप्त

0: कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सामने सुनियो बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बण्यो लोह होयो लाल नदर सतगुर जा तारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कह बिचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दिद तिन के गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पत प्रेत सुर नर पे जाम गुरु है वाल तने क्या गारव दीजे जाम गुरु है वाल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु है वाल ज्ञान ध्यान अनन पर जाम गुरु है वाल शब्द साखी सो सच्चे कार जो गुरु गुरु एन जपे दास पाट बेनत कह जो गुरु नाम रिद महत रह सो जन्म मरण दो थे रह गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर का शब्द सुपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कौ नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अक्यथ संसार में
1: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो फुती जो प्यास पीयूष पीवन की बंचत सिद्ध को बेत मिलायो पूरन पो मन ठोर बसो रस बासन सोजो दहन दस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जल्यल तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरुमुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर किन्नी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निसबासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरयो भन दास आस जगतर गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरभउ निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है परम भूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुर

0: चलना गुरु घर गुरु घर गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध अपे रसन अनस रसे सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइए गुरमुख त्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम बंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो
1: गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाध शब्द जिस केरे फुन दुख नास सुखदायक सुरो जो तरत ध्यान बसत तै नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत।

सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप की देवाद दे। सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बरह जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु।

सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहदै साहु जिस पास बैठिया सोहिऐ सब नादा विसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहदै साहु जिस पास बैठिया सोहिऐ सब नादा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी राग सूही महला चौथा शांत कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाई

ओए जावे हैं आस कर जाए निराश कित फल फिके फुल भग भके कामना में पत मिट दीवी नानका गुण चंगाइया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना को तर तर